अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।

0: حربي سافريتهم بعد اونا ده دوست اونا ده هم سفر تي اونا دي دادا جي دنیا رچ نامہ گون بڑا جلا ہے شیرپور دے شیر گردی بڑا دا گائک رینکو شاہ دیوانہ रिंकू शाह दीवाना हरप्रीत वांग ही बहुत ही सुरीली आवाज़ का मालिक है ते इस दे नाल दी नाल उस दे हत्थां दे विच भी संगीत है उस दे गले दे विच भी पूरा सोज है ते ओ जिन्हां शब्दां नूं अपने गले दे विचों उतारदा है तां उत्थों बहुत ही सुरीली आवाज़ निकलदी है उस दे नाल ओ स्रोतियां दा मन मोह लैंदा है। रिंकू शाह दीवाना भी इस बार चरण सिंह सफरी जी दी एक धार्मिक प्यारी इतिहासिक रचना लेके हाजिर हो रहा है। रिंकू शाह दीवाना जी थोड़ा प्रोग्राम गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है।
1: हैलो जी, सत श्री अकाल जनाब। चरण सिंह सफरी पंजाब दे उगे शायर जिन्हां ने कई धार्मिक गीत पंजाबी मां बोली दी झोली पाए और सिखी दी सेवा कीती अपनी कलम राही, उन्हां दी एक रचना एक गीत धार्मिक आप दी नजर करन लगा हां।

मैनू थोड़ी नौकरी ना मन जूर है, फिट लाण ता दियोगा तुसा नू जहान जी। हादा नारा मारदा, हादा नारा मारदा नवाब शेर खान जी, हादा नारा मारदा। थोड़ा वैर है गोविंद सिंह नाल जी, ओदे नाल लड़ो बाण के मिशाल जी। मारो ओनू पावे कर के हलाल जी, इना निर्दोषियां दी का तो लेंदे जान जी। हादा नारा मारदा, हादा नारा मारदा नवाब शेर खान जी, हादा नारा मारदा। कहंदा थोड़ी नौकरी नू मारी लत है, मेरे विच इस्लामी

दे पागा जमना किस्मत रुड़ियां दा पारी उमरा तक नहीं दे सकदे असी देना कुड़ियां दा पारी उमरा तक नहीं दे सकदे असी देना कुड़ियां दा प्यो दादे दी सरदारी ते माणी ने मावां दा कईयां कुखां दे विच कतल कराता ठंडियां शामां दा।

0: थोड़ा हंसना थोड़ी जी कुरी वटना। शमी भाई जी
1: जी,
0: थोड़ा हंसना थोड़ी जी कुरी वटना, दिलानू सदा याद ही रहू।

0: वाह
1: लास्ट रह गई लाइन बाबे
0: जी,
1: तमाम मैं थोड़ा ही लेना चाहता ज्यादा ले गया कोई गल नहीं चलो
2: बहुत बहुत खूब
1: देख के

तेरे ते दा एहसान सारी जिंदगी मैं ढोआ, तेरे हासिया च हसा, तेरे रोने च रोआ।

मैं किन्ना तेनू चाया, तेरे विचों रब पाया, कासे जोगा नहीं ए रहा, मैं बड़ा मन समझाया, मंजिल सारे कर लेनी एक दिन आपां दोवां, मैं तेरे हासिया च हसां, तेरे रोने च रोवां।

मैनू जानी ना तिला भौकर बन के हूं जदूं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं मैं पक्षियां दी झल नहीं।

0: हारी गबरुआ हिम्मत ना हारी बेलोका।
1: सिंह दी रचना जिहड़ी कि जोगिंद्रपाल मल जी ने सांझी कीती है। इस तों बाद हुण मलकीत बुल्ला जी साडे एक शायर ने उहनां दी ती है सिमी सोतरा जी, ओह दिल्ली नूं जिहड़ी बंगार पाउंदी होई एक जिहड़ी रचना लै के हाजिर हो रहे ने। सिमी सोतरा जी ਦਾ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਾਉਂਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਿਮੀ ਸੋਤਰਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
2: ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਜਨੂਨ ਨੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੀ। ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ

अपने वीरा नाल माए रल के मैं रहंदी सी, तेरे कर बैठी माए दस तेनू की कहंदी सी, जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए।

एक ऐसा फर्ज निभाया तू, सारे बुक बुक रोंदे माए, सारे बुक बुक रोंदे माए, मोह कोई ना बोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। छड़ चली अज माए, छड़ चली अज माए, बाबले दी गली में, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली में। छड़ चली अज माए, बाबले दी गली में, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली में, हुन साम के रख ले माए, हुन साम के रख ले माए, मेरे गुड़िया पटोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। तेरे की करा महल चुबारे माए, तेरे की करा महल चुबारे माए, जिथे मेरे जोगी था नहीं, जिथे मेरे जोगी था नहीं, गिला की करा जमाने ते, गिला की करा जमाने ते, मेरी ता अपनी बनी मां नहीं, मेरी ता अपनी बनी मां नहीं, बेगाने आच पोगल नू भेज के माए, बेगाने आच पोगल नू भेज के माए, कीता अखा तो लेनी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओ लेनी, हुन लुक लुक क्यों।

डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई, जे संतरी जांदे ओ डूब जाना, अजे री वादे करी जांदे। चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, की करां जे आपे चे, की करां जे आपे चे।

डूब गई जे संतरी जांदे, ओ डूब जाना जे भी वादे करी जांदे। जोर ना मंगदे नहीं आपी भला देवे क्यों, जोर ना मंगदे नहीं आपी भला देवे क्यों। गली बाती जे सदा

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे, भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे। ए कौन जो हक्कां लई सूली चढ़ी जांदे, ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिंद वादियां चे डुब गई, जिंद वादियां चे डुब गई, जे संतरी जांदे, ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जे चर तेरा ऐ जिस्म लोहा हुंदा लाखा नहीं, जे चर तेरा ऐ जिस्म लोहा।

आखदे ने लोक ही काठो कहानिया हड़ एकता दा केड़ा सकेरो कहानिया हड़ एकता दा केड़ा सकेरो कहानिया हड़ एकता दा बन के कटामाय असी धरती बसना है बन के कटामाय असी धरती बसना है धोवांगे गवार जेड़े बिच पौण दे सिर बढ़ने ने सिर बढ़ने ने बीमी सदी दे रोण दे सिर बढ़ने ने सिर बढ़ने ने बीमी सदी दे रोण दे सिर बढ़ने ने बेलड़ा ने माण

अति रात तक करना आंदा, अति रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा, अति रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा। अच हंजू केर रोवे, अच हंजू केर रोवे, अन्न दाता संसार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। तेरा मेरा करना छड दो, धर्मा पिछे लड़ना छड दो, तेरा मेरा करना छड दो, धर्मा पिछे लड़ना छड दो। किंज पैने फिर कित्ते भंगड़े, किंज पैने फिर कित्ते भंगड़े, की मतलब हो विसाखी दा, किंज रुआब हंडाउना दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा, किंज रुआब हंडाउना दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा। वास्ता पंजाबीओ, वास्ता पंजाबीओ, माँ धरती दे दुलार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। बस करो हुण होर नी सहना, बस।

अड़या लोक मारी देता ने वे, जो सी पीड़ पराई असी अपने तन ते ला बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। छोटी उम्रे अखियां लाइया लगे रोग अवले, मीडियां खुल के गले च लटकन लोक आख दे चले। तेरे तीर ही जर दे सजना, तेरे तीर ही जर दे सजना, असी अपने सीने खा बैठे। तू की दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। जिस

आई, जो दुनिया पत्थर मारे हसी ओ भी हंस हंस खा बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। तू की दर्द न जाने असी बहुता दर्द हंडा बैठे। इश्क दी पौड़ी पैर टका के ये जिन